आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

साथ में अपनी भी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं घरवाली की जय।

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

0: रानी।
1: ये बात है, कहीं नजर न लगा दीजिए।
0: अजी हम तो आपकी नजर के मारे हुए हैं।
1: तो फिर हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: दो पड़ोसियों से
1: क्या
0: झांके न खिड़कियों से,
1: दरवाजा खटखटाया लगता है कोई आया।
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like Kishore, but शादी का दे.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

0: तू है बुलबुल।
1: सच है बिल्कुल, यू आर वंडरफुल।
0: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया चले छम छम छम छम छ छम छ छम। ए गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है, रोज

0: ये फादर का बच्चा कौन है?
1: फादर का बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं, और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।

सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
1: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
0: फिर ना कभी कहना।

0: गारे गारे
1: गारे बड़े
0: गारे गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: गारे गारे गारे
1: ये आम को बटका
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर ये इन्ना आया है तो

0: ये घोड़ा चतुरा घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा एक पैर है ना या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात
2: अपने ही जाल में फंसत जात
1: हम मरत

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो, फिर

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

हुरिया हुरी हप्पू हप्पू हुरिया।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: से
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: देंगे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो है 91-35-84-12-32 यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे राधे राधे। और दोस्तों मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा शो जिसका नाम है स्टार ऑफ द वीक। और आज के स्टार ऑफ द वीक के मेहमान एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पूरे चार हैं, और वो है राहुल रॉय, अतुल अग्निहोत्री और पृथ्वी, साथ ही साथ रोनित रॉय। तो आप सभी का वेलकम करते हुए सबसे पहले आप मेरे पसंद के गाने को एंजॉय कीजिए। आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने और आपके गाने को प्ले करने।

और मुझे आने में पता है क्यों लेट हुआ, क्योंकि रास्ते में बारिश जबरदस्त वाली हो रही थी और मैं रुकते रुकते भींगते भागते किसी तरह से करके स्टूडियो पहुंचा हूं भाई, इसलिए आज आने में देर हुई। और याद है ना, अब सबको याद है बिल्कुल, क्योंकि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है बिल्कुल।

हाय हाय क्यों प्यार हुआ क्यों प्यार हुआ। वैसे बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, सभी दोस्तों का वेलकम करते हैं। सबसे पहले आज जुड़ने वाले हमारे सरफराज जी साउथ अफ्रीका से, वालेकुम सलाम भाई जान, और बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। उनके बाद जुड़ी है नाहिद अंसारी जी, वाह क्या बात है, वेलकम है नाहिद अंसारी जी। साथ ही साथ वालेकुम सलाम, और जुड़ चुके सुनीता गोप जी सरायकेला झारखंड से, वेलकम करते हैं आपका भी। और जुड़ने वाले हैं गजानन सरोकार जी, वेलकम करते हैं। अशोक देशमुख जी हैं हमारे, बहुत बहुत वेलकम है। नीमभोरा महाराज से नंदनी तिवारी माँ जी, बहुत बहुत वेलकम है माँ जी आपका भी। और सर्वेश भगत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। साथ ही साथ जुड़ गए हैं हमसे राधा कृष्ण गोप जी, वेलकम करते हैं। सर्वजीत सेठी जी जुड़ चुके हैं आपका भी, वेलकम है सर्वजीत सेठी जी। सुनील कुमार जी जुड़ चुके हैं बांका बिहार से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। ज्योति खटवड़ी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी ज्योति दीदी जी। और साथ ही साथ जुड़ चुके हैं हमसे, क्या नाम है इनका, ये कालीचरण मास्टर जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं कालीचरण मास्टर जी। और बीके पंत जी जुड़ चुके हैं आपका भी, वेलकम करते हैं बीके पंत जी। और बता दूं कि बिट्टू कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी बिट्टू कुमार जी। और ये यानी फूले भक्त संजू भाव जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं फूले भक्त संजू भाव जी। एंड हुकुमचंद जांगर जी ये जुड़ चुके हैं कोटा राजस्थान से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी स्वागत है। और हमारे किशन पाल शाके जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, वेलकम है। और हीरामन खिलाड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं हीरामन खिलाड़े जी का भी। और गोविंदा खंडाते जी जुड़ चुके हैं आपका भी, वेलकम है गोविंदा खंडाते जी। और जाकिर खान जी वालेकुम अस्सलाम खुशामदीद भाई आपका भी वेलकम है। और साथ ही साथ अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी अभिषेक तिवारी जी। और मुबारक हुसैन जी बहुत बहुत भाई मुबारक आप जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका खुशामदीद। और साथ ही साथ राजेश कुमार जी वेलकम है आपका भी। और काजल झक्का जी बहुत बहुत वेलकम है झक्का जी। और नंदलाल यादव जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं नंदलाल यादव जी। एंड जितेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं जितेंद्र सिंह जी। और नाजिम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है भाईजान आपका भी, वेलकम करते हैं। और दिगंबर सिंह जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है दिगंबर जी। अकबर खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अकबर खान जी, वालेकुम सलाम। और अमीना खान जी जुड़ चुके हैं आपका भी, वेलकम है खुशामदीद। लिखते हैं कि हॉट स्टार सुनने वाले वालों की धड़कनों में इन बसने वाले आरजे अमन जी शामिल हो गए था। हाय थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे मैसेज के लिए। और जुड़ चुके हैं सैयद यूनु जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सैयद यूनु जी भी। और कुंता बेनी जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। बाबूलाल अंजाना जी जुड़ चुके हैं आपका भी, वेलकम है। एम डी फैज आलम जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत वेलकम है, बिल्कुल खैरियत से हूँ। और प्रशांत अम्बुलकर सर जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी, मतलब सभी दोस्तों का वेलकम वेलकम वेलकम। और गाने का जो आगाज मैं करने जा रहा हूँ आज के शो का, आज तो सभी गाने हो माई गॉड, सभी एक से बढ़कर एक, सभी बहुत ही प्यारे प्यारे। ओके तो अगला जो आज का जो यानी सबसे पहला गाना है, जो नगमा है, वो डिमांड आई है डिम्पी जी का और सुनील कुमार जी का और राधा कृष्ण गोप जी का। ये सभी सुनना चाहते हैं, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बिल्कुल एक सनम चाहिए, एक सिर्फ आशिकी के लिए। एंजॉय और हमारे जाकिर मुरानी जी भी जुड़े हुए अगले हफ्ते का स्टार ऑफ द वीक लेकर। वो अगले हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक है फरदीन खान, फैजल खान, जावेद जाफरी, दीपक तिजोरी, रवि बहल। वाह

0: बिल्कुल एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, दीवानगी के लिए, सब चीज के लिए सिर्फ एक सनम। वैसे बहुत सारे फीडबैक भी आए हुए हैं, शामिल करते हैं और एक एक करके। सबसे पहले हीरामन जी क्या कहते हैं, जरा इनकी सुनते हैं।
1: नमस्कार आरजे अमन सर जी, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग जी,
1: इस लाइव कार्यक्रम में मैं भी जुड़ गया हूँ,
0: बहुत बहुत वेलकम है।
1: और गीत भी सुपर से ऊपर चल रहा है।
0: थैंक यू सो मच।
1: मिलते मिलते हंसे,
0: अभी कहाँ चले, अभी तो अच्छा वो तो
1: दीवादियों ने, ये गीत की फरमाई चल रही है सर, मैं सुन रहा हूँ रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, वो गाना प्ले हुआ था। और सैयद दिनू जी क्या कहते हैं, जरा इनकी भी सुन लेते हैं।
2: जुम्मा मुबारक
0: आपको भी।
2: मैं जुड़ चुका हूँ रेडियो हॉट स्टार से, मैं सैयद दिनू, सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। थैंक यू आरजे अमन सर जी।
0: वेलकम जी आपका भी। और ज्योति खटवड़े जी लिखते हैं कि अमन जी जी आपका मैसेज तो मुझे दिख रहा है, बिल्कुल इन्हें दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, क्या बात है। और नाहिद जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों को मिली जुली पसंद, सुपर हिट अमेजिंग, थैंक यू सो मच। और प्रशांत अमरका सर जी लिखते हैं कि बस एक सनम चाहिए, दोस्तों की पसंद लाजवाब लगी है। बिल्कुल लगी है और पसंद ही बहुत ही शानदार थी। ये फीडबैक
3: आरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
3: राधा कृष्णा गोप जी और दो बहन भी है, इसमें तीन आदमी का मिले जुले फरमाइश से तीनों आदमी को धन्यवाद देते हैं जी।
0: थैंक यू जी, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और साथ ही साथ अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि मिली जुली फरमाइश आशिकी का शानदार लगा है, थैंक यू सो मच। और ये क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
4: अमर भैया, आपने मेरी पसंद का गाना प्ले किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और सभी दोस्तों का फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से।
0: ओके जी, वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ गजानन जी लिखते हैं कि बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बेहतरीन नगमा सुनने को मिला, मजा आ गया है, धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को। बीटू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड, थैंक यू सो मच। एंड एमडी फैज जी लिखते हैं कि जी बिल्कुल एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, जिंदगी के लिए, हर खुशी के लिए, बिल्कुल। एंड संतोष गौंड जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं संतोष गौंड जी। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि अमन जी हमारे गाने को बजाने के लिए धन्यवाद। अकबर खान जी लिखते हैं कि अमन जी आज तो आपके बिहार के गोरखपुर से, बिहार में नहीं है गोरखपुर अभी, वो मतलब यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हाँ आइए, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और नाजिम जी लिखते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपर हिट पसंद के लिए, थैंक यू सो मच। बाबूलाल जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की पसंद मुझे बहुत प्यारी लगी है। और जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और जुड़ चुके हैं यहाँ पे एस खानम जी, बहुत बहुत वेलकम है। और लिखते हैं कि आज के स्टार ऑफ द वीक कौन कौन है, एक बार फिर से जरा नाम बता दें। जी बिल्कुल बताऊंगा, आज के स्टार ऑफ द वीक के चार मेहमान हैं और वो चारों मेहमान बहुत ही बेहतरीन हैं। और उसमें से सबसे पहले है राहुल रॉय। ओके, राहुल रॉय के आपने सुना होगा एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। और अतुल अग्निहोत्री है ना, अतुल अग्निहोत्री का भी गाना है, फिल्म शायद मैं बता दूं कि यानी कि साजन का घर में एक मुझे गाना बहुत पसंद है, अभी तक उसकी डिमांड आई नहीं है कि आहें भरेंगे यानी प्यार में तेरी सनम। हाँ, दर्द सहेंगे कुछ न कहेंगे, चुप ही रहेंगे हम प्यार में तेरे सनम। और पृथ्वी जी है और रोनित राय जी हैं, ये चार हैं, बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, सभी के गाने एक से बढ़कर एक हैं और सभी के लिए क्या ही बताएं। थैंक यू जाकिर मुलानी जी, इतना अच्छा स्टार ऑफ द वीक देने के लिए। और कुंता जी लिखते हैं कि मेरी जुली फरमाइश बहुत ही प्यारी लगी। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो एमडी नाजिम जी का है, सुनना चाहते हैं फिल्म दिल का क्या कसूर का वो लाजवाब और आइकॉनिक सॉन्ग जो मुझे बेहद पसंद है और सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो भाई सुनवा रहा हूँ। और इन्होंने सभी दोस्तों का नाम भी लिखा है, चलिए कुछ नाम यहाँ पे मैं रीड कर भी देता हूँ। उसमें है हमारे यानी कि सबसे पहले हमें है, आरजे वंशिका जी को भी है, और संजू भाव जी को भी है, और सर्वेश भगत जी, रोहित कुमार जी को, बीके पंत जी को है, नाहिद अंसारी जी को, कुंता बेनी जी को, और पूजा जी को, और जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्तों के लिए ये अपना गाना डेडिकेट कर रहे हैं, तो भाई सुनवा रहा हूँ। बिल्कुल खता तो जब होके हम हाले दिल किसी से कहें, और किसी को चाहते रहना, कोई खता तो नहीं, बिल्कुल
5: खता तो जब

0: बिल्कुल खता तो जब हो के हम हाले दिल, मतलब यानी कि खता मने गलती होती है, यानी गलती तो तब हो के जब हम किसी से कहते कि भाई मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन किसी को चाहते रहना वो तो कोई बात ही नहीं है भाई, चाहते रहो आराम से चाहते रहो। वैसे फीडबैक हो माई गॉड बहुत ज्यादा है वह, एंड यहाँ पे ज्योति जी लिखते हैं कि दोनों सॉन्ग बहुत ही सुपर हिट लाजवाब लगे हैं, थैंक यू सो मच। नाजिन जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी, धन्यवाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, इस गाने को आपने मेरा प्ले कर दिया। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं ना।
1: आरजे अमन सर जी, एमडी नाजिम जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: बिल्कुल जी, और वैसे मैं बता ही देता हूँ कि अगला फीडबैक ये क्या, और जितेंद्र जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही शानदार नगमा, थैंक यू सो मच भाई इस गाने के लिए। आरिफ सिंधी जी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अमन सर जी, मैं भी गांधीनगर गुजरात से जुड़ चुका हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और रवि मोहाड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है रवि मोहाड़े जी। नाही जी लिखते हैं कि ये किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, दिल में उसकी यादें सजाना कोई सजा तो नहीं, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो फिक्र कैसी, क्योंकि यानी किसी के लिए उम्र भर दुआ करना कोई गुनाह तो नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है, दुआ करते रहिए ओके। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा नगमा है जी, जी नगमा तो बहुत प्यारा था। जाकिर खान लिखते हैं कि तेरे प्यार में दो पल की जिंदगी बहुत है, एक पल की हंसी और एक पल की खुशी बहुत है, ये दुनिया मुझे न जाने, लेकिन यानी कि तेरी आंखें मुझे पहचानती है, ये मेरे लिए बहुत है जी, बहुत वो तुम मुझे पहचान के दुनिया से क्या गम है कि नहीं। मंगेश देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मंगेश देशमुख जी। और आत्माराम पाटिल जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, शानदार गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कुछ कह भी रहे हैं।
2: हेलो प्यारे अमन खान सर जी,
0: जी बोलिए।
2: आज का प्रोग्राम का आगाज बहुत ही सुंदर ऐसे गीत से, आशिकी मूवी का गीत हमें बहुत पसंद लगा, शुक्रिया आत्माराम पाटिल।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको भी आत्माराम जी। कुंता जी लेते हैं वाह कितना खूबसूरत नगमा है, थैंक यू नाजिम जी, आपकी डिमांड बहुत ही शानदार लगी है, ओके थैंक यू सो मच आपका भी। और यहाँ पे आदरणीय प्रशांत अम्बुलकर सर जी लिखते हैं कि किसी को चाहते रहना कोई खता नहीं, बिल्कुल सुपरहिट पसंद है। और संगीता अम्बुलकर जी कहाँ है, मैं उनको मिस कर रहा हूँ, बहुत दिनों से वो नहीं आ रही हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हो बिल्कुल। और एस खानम जी लिखते हैं कि जी बिल्कुल खता तो जब है खता ही है, पर जिस दिन बता देंगे उस दिन से सजा और मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल सजा मिलेगी, वैसे गाना बहुत ही बेहतरीन जी, जी थैंक यू सो मच आपका। अमीना खान जी लिखते हैं कि जी दिल का अमीर राइट है मगर दिल नहीं नहीं ऐसा नहीं है। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की मिली जुली फरमाइश मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश के लिए धन्यवाद देते हैं। और नंदलाल जी क्या कहते हैं जरा ये भी सुन ही लेते हैं।
3: हर एक पल में तुझे याद किया करता हूँ,

0: बहुत लाजवाब गाना पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नंदलाल।
1: ओके जी नंदलाल यादव जी, किशोर पाजी लिखते हैं बहुत ही बेहतरीन नगमा, थैंक यू सो मच। बीके पाजी लिखते हैं सर जी लाजवाब पसंद, एमडी नाजिम जी का धन्यवाद देते हैं उनको। इसी बात में अगला जो डिमांड है हमारे अशोक पाल जी का है और ये कहते हैं धीरे धीरे से जिंदगी में, राधे भाई धीरे धीरे आ जाओ, लेकिन आ जाओ प्लीज आ जाओ।

0: बिल्कुल धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और दिल को भी चुराना, ये फीडबैक भी सुनाना।
1: हेलो आरजे अमन सर
0: जी, बोलिए।
1: मैं अनिल मेहता, सूरत गुजरात से, मैं भी आपके लाइव शो में जुड़ गया हूँ। ओके, थैंक यू,
0: वेलकम जी आपका भी। और प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है प्रकाश जी। और राधा कृष्ण को भी देखने के बहुत ही लाजवाब पसंद है। थैंक यू सो मच इस प्यारे से डिमांड के लिए। बिंदु कुमार देखने के बहुत ही खूबसूरत

0: अमन सर जी लाजवाब सॉन्ग, अशोक पाल जी को दिल से धन्यवाद, रूपचंद गोयल।
1: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको। अभी ज्योति जी लिखेंगे लाजवाब पसंद है ये, और हमारे यानी कि पसंद हम बुलकर जी लिखते हैं कि अशोक पाल जी के पसंद एकदम लाजवाब, बोले तो ललन टॉप, मजा आ गया सुन के। इसी बात पे अगला जो डिमांड है वो हमारे यानी कि गजानंद जी ग्रुप और फुलवक संजू भाव जी का, एंजॉय कीजिए इस गाने को।
2: रेडियो हॉटस्टार सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आरजे अमन सर जी, आपको भी हमारा दिल से प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार
2: अमन सर जी, कैसन बानी?
1: बहुत बढ़िया, रौरा बताइए कैसन बानी।
2: ओके अमन सर जी, हम भी बहुत ही बढ़िया बानी। अमन सर जी, मैं फूले भक्त संजू भाऊ बोधवड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आज शुक्रवार और आज की अपनी थीम है स्टार ऑफ द वीक, और आज के कार्यक्रम में राहुल राय, अतुल अग्निहोत्री, पृथ्वीराज जी और रोनित राय, ये चार दिग्गज कलाकारों को हॉटस्टार पर आमंत्रित किया है सर, और आज के कार्यक्रम में इन्हीं की गीत चलने वाले हैं। तो हमने राहुल राय, इनकी एक फिल्म ली है सर, फिल्म का नाम है आशिकी, और यह फिल्म 1990 में रिलीज हुई थी।
1: अच्छा।
2: आप हमें इसी फिल्म का एक सदाबहार गीत सुना दीजिए, जिसे आवाज दिए है कुमार सानू जी इन्होंने, और गीत के बोल सर इस प्रकार है।

0: एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे।
1: बिल्कुल आपके चेहरे ने प्यार से देखा। वैसे मैं गाना प्ले कर रहा हूँ आपका और गजानंद जी का ग्रुप का, दिल का आलम मैं क्या बताऊँ तुझे, सच में एक चेहरे ने प्यार से देखा मुझे। Enjoy the track। और ये हमेशा की तरह सभी को डेडिकेट कर

0: वेलकम बैक और फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं। और यहाँ पे नाहिद जी सिंह बहुत ही ब्यूटीफुल पसंद है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और यहाँ पे मुंबई गोडी, इतने सारे फीडबैक, मैं तो थक जाऊंगा बिल्कुल। ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: आरजे अमन सर नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: हम अरुण मंडल राजकोट से आपके कार्यक्रम में जुड़ गए हैं।
0: हाँ।
1: और आज बहुत अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका अरुण मंडल जी। और पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि मेरी तन्हाइयों की तुम सबसे खूबसूरत महफिल हो। लिखती हैं कि मेरी तन्हाइयों की तुम सबसे खूबसूरत महफिल हो, जिस राह पर मैं चल रही हूँ उसकी तुम ही मंजिल हो। जरा महसूस तो करो इस दिल की बेइंतहा तड़प को, जरा महसूस तो करो इस दिल की बेइंतहा तड़प को, तुम भी तो इस धड़कन में बराबर के मालिक होते। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि रात भर मैं करता रहा तारीफ चांद से, और तेरे इश्क में उसको भी फीका बता दिया, और तेरी खूबसूरती की चमक में अब क्या कहें, उससे तेरी तारीफ ने तो सुबह के जलते सूरज को भी ठंडा बना दिया। हाय हाय, वैसे कैसा लगा बताइएगा जरूर। वैसे फिलहाल मेरे पास फीडबैक और भी है, ये क्या कहते हैं सुनते हैं इनकी।
2: जय अमन सर जी, फूले बख्श संजू भाव जी और गजानंद सोलोकर जी, पूरा ग्रुप का भाई अपने गाने में शामिल किए, सभी को धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे बीके पंची लेते हैं, सर जी ये गुरु फरमाइश शानदार लगी है, थैंक यू सभी दोस्तों को। और जितेंद्र जी लेते हैं, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। एंड ज्योति जी लिखते हैं कि गुरु की फरमाइश मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन जी को प्यार भरा नमस्कार है, हम सभी साथियों की डिमांड को पूरी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा जी, सच में। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत नगमा है, थैंक यू सो मच। और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि ग्रुप की फरमाइश मुझे बहुत ही पसंद आई है, थैंक यू सो मच। और अमीना खान जी लिखते हैं कि हाँ बताना चाहते हैं ना। और वैसे यहाँ पे यानी कि प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड दोस्त गजानंद सरकार जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच गुरु फरमाइश में शामिल रखने के लिए। एंड हमारे रूपचंद गोयल जी लिखते हैं कि मस्त एंड लवली सॉन्ग, मजा आ गया। राधाकृष्ण गोयल लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, इस गाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये
3: गाना बहुत सुपर से ऊपर है, तो इसी बात पर एक लाइन है, हम तुम्हें कह ना सके जिसे तुम देखते हो आईने में, उससे हम बहुत प्यार करते हैं।
0: अच्छा,
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद इस गाने के लिए। एमडी फैज आलम, मोहिउद्दीन नगर।
0: एमडी फैज आलम जी, हम तो यही कहें कि तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो। तुम हकीकत नहीं, हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वही दौलत हो। और किस लिए देखती हो आईना, किस लिए देखती हो आईना, क्योंकि तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, आईना देखने की जरूरत ही नहीं है, है कि नहीं। और वैसे यहाँ पे दिलीप कुमार जी लिखते हैं कि नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और कुंता जी लिखते हैं कि संजू भाव जी के यहाँ पे गुरु फरमाइश बहुत ही शानदार लगी, थैंक यू सो मच। बाबूलाल जी लिखते हैं कि जाकिर मुलायम जी को दिल से धन्यवाद देते हैं आज के इतने अच्छे मेहमान को लाने के लिए। इसहाक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम भाई जान। और अनिल मेहता लिखते हैं वाह क्या लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। एंड जी बिल्कुल। और यहाँ पे अजय भगत जी लिखते हैं कि हम भी शामिल होंगे जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि अच्छा ये रविंद्र गोरखपुरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी रविंद्र गोरखपुरी जी। और नंदनी माँ जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी, अगला भी गाना सुनिए, ये भी बहुत ही प्यारा है, जिसे लेकर आए हुए हैं अनिल मेहता जी। अनिल मेहता जी सुनना चाहते हैं कौन सा गाना, ये लिखते हैं कि अच्छा कुछ कहते हैं, सुन लेते हैं।
4: दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं।
0: अच्छा, अच्छा।
4: दिल क्या क्या कसूर का ये गाना सुनना है, डेडिकेट रहेगा अमन सर को, आरजे वंशिका को, आरजे अमन सर को, आरजे परमर सर को, और ऑनलाइन सभी दोस्तों को। ओके थैंक यू।
0: ओके जी, तो सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान नहीं दूंगा ना यार, अगर जान दूंगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा कैसे, मुझे तुम्हारे साथ रहना है ना, जिंदगी गुजारना है ना, एंजॉय करना है।

0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल दिल जिगर नजर क्या है एमडी फैजली, वाह वाह वाह क्या लाजवाब। और यहाँ अनिल मेहता जी लेते हैं, थैंक यू सो मच। और जमन जी आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। और रविंदर गोरखपुर जी लेते हैं कि आज का थीम क्या है। आज का थीम नहीं, आज का स्टार ऑफ द वीक के मेहमान है, चार मेहमान है। और वो मेहमान आपको एक बार मैं फिर बता देता हूँ, जिसे जाकिर मौलानी जी लेकर आए हुए हैं, राहुल रॉय, अतुल अग्निहोत्री और इन पृथ्वी, नॉट इन पृथ्वी राज, सिर्फ इन पृथ्वी नाम है इनका, और रोनित रॉय, ये यानी कि चार चार दोस्त हैं और सभी के ऊपर गाने भेज सकते हैं। ओके, और हुकुम चंद जी क्या कहते हैं?
1: अमन सर नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: आज की थीम पर चार स्टार नहीं बल्कि पांच स्टार है।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: एक स्टार अपने अमन सर हैं।
0: अच्छा, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच।
1: तो मैंने इनको स्टार बना दिया।
0: ओह
1: सभी भाई अपना वोट दे के अमन सर को स्टार बनाए।
0: धन्यवाद
1: हुकम चंद, कोटा राजस्थान से।
0: धन्यवाद आपके वोट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और गजन अंजलि लिखते हैं कि अनिल मेहता जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, दिल दिल जिगर नजर क्या है। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत नगमा, वाह मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि सुपर हिट लाजवाब डिमांड, एंड ये क्या कहते हैं?
2: दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं।
0: जी बिल्कुल,
2: अमन सर जी सूरत वाले अनिल मेहता जी की पसंद लाजवाब लगी, उनको मेरी तरफ से धन्यवाद। रूप चंद गोयल, बाड़मेर राजस्थान।
0: हम मुझे पता है वो आपके मतलब रिश्तेदार है कुछ, है ना। एंड राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड, थैंक यू सो मच इसके लिए। अजय भगत जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और ओके ओके, थैंक यू सो मच। और इसी बात पर यहाँ पे कुंता बेनी जी लिखते हैं कि नाइस फरमाइश है, थैंक यू सो मच। और नंदरी मालिक जी कि ये भी गाना बहुत प्यारा है। जी माँ जी आगे सुनते रहिए, सभी गाने बहुत प्यारे हैं। और दत्ता जी लिखते हैं कि नमस्कार अमन जी, मैं भी जुड़ गया हूँ, सुख संध्या सभी दोस्तों को, वेलकम है आपका भी। और इसी बात पर अगला जो नगमा है,
3: ये मेरे तराने, दिल है तेरा दीवाना।
0: बहुत से दोस्त शामिल है इस, ये जो डिमांड है इसमें हमें शामिल है अशोक देशमुख जी का पूरा ग्रुप। अशोक देशमुख जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, आत्माराम पाटिल जी हैं, सैयद यूनुस जी हैं, और यानी कि प्रकाश डोन जी हैं, और आरिफ सिंधी जी हैं। ये सभी दोस्तों की एक ही डिमांड है, और वो डिमांड कौन सा है इस ऑडियो को सुनने के बाद आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा।
4: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
4: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
4: आज का थीम है स्टार ऑफ द वीक। तो स्टार ऑफ द वीक में अतुल अग्निहोत्री पर फिल्माया गया एक गाना सुनना है।
0: अच्छा अच्छा।
4: फिल्म का नाम है क्रांति वीर।
0: अच्छा।
4: और गाने का बोल है, फूल कली चांद सितारे ये सब क्या है,
0: नाम तुम्हारे
4: नाम

0: तुम्हारे।
1: बिल्कुल।
0: ये गीत सबसे पहले मैं आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को डेडिकेट करता हूँ, और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर। धन्यवाद।
1: बिल्कुल सुनवाएंगे। सर्वेश भगत जी क्या करते
2: जी? अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार। नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है क्रांति वीर, गाने का बोल है फूल कली चांद सितारे। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरतंदा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, परशुर भगत, आनंद शेखर, अनंत कुमार, सुनील कुमार, उन्नी कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, अतमाना पाटिल जी, सैयदी अनुसू जी, आर जे अमन सर जी, सुंदरता की मूरत जी, आर जे रत्ना जी, आर जे वंशिका जी, आर जे एम एस परमार जी, और सभी आर जे, और सभी भाई, और सभी बहन, और सभी लिसनर इसमें शामिल, सभी को सुना दीजिएगा। जयराम जी के अमन सर जी,
3: अस्सलाम वालेकुम। आर जे अमन सर जी, मैं अष्टी जिला जालना महाराष्ट्र से सैयद यूनुस बात कर रहा हूँ सर जी। और आज स्टार ऑफ द वीक, उसी मौके पर एक गीत लेकर आया था सर जी। मैं फिल्म का नाम है क्रांति वीर, और गीत के बोले फूल कली चांद सितारे, खुशबू पवन रंग नजारे, ये सब क्या है?
1: नाम तुम्हारे।
3: ये गीत के बोले सर जी। और इस गीत के साथ जितने भी रेडियो हॉटस्टार सुन रहे हैं उन सबको ये सॉन्ग डेडिकेट है। आरजे अमन सर जी, ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार, जो दीवाना बना दे। थैंक यू आरजे अमन सर जी।
1: तो आप सभी के डिमांड पर ये जो ये नगमा है, जिसमें अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम जी, सैयद यूनुस जी, और प्रकाश दोन जी, आदिप सिंधी जी, सभी शामिल। एंजॉय।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं बहुत सारे, माय गॉड मैं क्या करूं। और जुड़ चुके हैं यहाँ पे नाम है शिवशंकर शर्मा जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं शिवशंकर शर्मा जी। बीके पंजी लिखते हैं कि सुपरहिट डिमांड के लिए थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। और जाकर जी लिखते हैं कि यानी कि प्यार को जब लिखते हैं कि प्यार को जब जब प्यार हुआ तो प्यार ने प्यार से पूछा ये प्यार कैसे होता है, तो प्यार ने प्यार से बहुत यानी प्यार से कहा, जो इस शायरी को पढ़ रहा है उनके जैसा होता है। अच्छा ओ भाई गॉड थैंक यू सो मच। और इसी बात पर यहाँ पे यानी कि परवेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं परवेश कुमार जी। अनिल मेहता जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतना लाजवाब फरमाइश के लिए। और अमीना खान जी लिखते हैं कि जाकिर मुलायम जी का बहुत बहुत शुक्रिया आपके इंतखाब आपने इंतखाब किए हुए हैं आज के थीम वर्थ में स्टार चॉइस में और प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए। जी बिल्कुल थैंक यू सो मच आपका भी। और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि वह हमें सभी दोस्तों की मिलीजुली फरमाइश बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच इस डिमांड के लिए। एंड राधा कृष्ण को भी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की मिलीजुली डिमांड बहुत ही अच्छी लगी, धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अजय अमान सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। आप हमारा चार भाई का फरमाइश, हम अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद धनुष जी और दो भाई हैं,
0: छह भाई,
1: सभी को फरमाइश आप शामिल करती हैं अपने प्रोग्राम में, धन्यवाद सर।
0: वेलकम जी, वेलकम वेलकम वेलकम। नाहिद जी लिखते हैं कि तेरी मुस्कान मेरी हर खुशी का राज है, लिखते हैं कि तेरी मुस्कान मेरी हर खुशी का राज है और तेरा ही साथ मेरी मोहब्बत का आगाज है, और मांगू तो रब से बस तुझे ही हर दुआ में, और क्योंकि तू ही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। अब मुझे भी लगता है कुछ बोलना पड़ेगा, ये तो इतना बोलती है ना, इतना बोलते है कि मैं तो थक ही जाऊंगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि तेरी आंखों की गहराई में उतर गए हम, मैं तो यही कहूंगा कि तेरी आंखों की गहराई में उतर गए हम और बिना पूछे ही मोहब्बत कर गए हम, एक नजर क्या मिली उन आंखों से, एक नजर क्या मिली उन आंखों से कि जिंदगी भर के लिए ठहर गए हम, जिंदगी भर के लिए ठहर गए हम। वैसे फीडबैक आए हुए और भी बहुत सारे। जितेंद्र जी लिखते हैं कि ये मिली जुली डिमांड बहुत ही प्यारा लगा है, थैंक यू सो मच। और प्रशांत अम्बुलकर जी लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम ओह बहुत ही बढ़िया चल रहा है, थैंक यू सो मच। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की मिले जुले डिमांड बहुत ही अच्छे अच्छे आए हुए हैं। एंड कुंता जी लिखते हैं कि मिली जुली डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा नगमा है, सभी दोस्तों का धन्यवाद देते हैं। एंड सर्वजीत जी लिखते हैं कि मुझे कार्यक्रम शानदार लग रहा है, ओ थैंक यू सो मच। परवेश कुमार लिखते हैं कि सुपर हिट लाजवाब सॉन्ग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड गजानंद जी लिखते हैं कि अशोक देशमुख जी के यानी पूरे ग्रुप के बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, इतना प्यारा नगमा सभी ने सुनवाया। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो भी बहुत ही प्यारा है, जिसे लेकर आई हैं ज्योति खटवटे जी। और ज्योति खटवटे जी हमेशा सभी को डेडिकेट करती हैं, कुछ नाम अगर चाहूँ तो मैं बोल देता हूँ जिन्होंने मतलब उन्होंने जिनको डेडिकेट किया है खासतौर से, वो है आरजे वंशिका जी और आरजे यानी के परमार जी, और जितने भी दोस्त सुन रहे हैं सभी के लिए अपना गाना डेडिकेट कर रही है, जितने भी सुन रहे हैं अभी सभी लाइव हैं सभी के लिए। और ये गाना मुझे बहुत पसंद है, दिल के करीब है। एंजॉय द ट्रैक।

इनका अदा निराली है। अब इतनी इतनी यानी कि प्यारी उनकी अदा है कि बादल भी उनसे ये मांद पड़ रहा है, उनके उनके आगे फीका पड़ रहा है।

वेलकम बैक और बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं मेरे पास। और तो सबसे पहले यहाँ पे किशन पाजी लिखते हैं कि वाह वाह वाह क्या गाना है, दिल खुश कर दिया इस गाने ने। गजानंद जी लिखते हैं कि ज्योति खटवड़े जी के पसंद, मुझे बहुत बेहतरीन लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और नाजिन जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग, बिल्कुल ये तो गाना ऑसम है बिल्कुल। जितेंद्र जी लिखते हैं कि ज्योति जी के पसंद, मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी है, थैंक यू ज्योति जी। और राजेश कुमार लिखते हैं कि बेहतरीन ये नगमा का डिमांड है, थैंक यू सो मच। और ज्योति जी लिखते हैं थैंक यू अमन जी, आपने मेरा गाना सुनवा दिया, दोस्तों का भी धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने के लिए। एमडी फैच लिखते हैं वाह वाह क्या लाजवाब ये नगमा है, थैंक यू सो मच इस नगमे के लिए। ओके जी, और यहाँ पे इन बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन ये नगमा, वाह मजा आ गया सुन के। एंड हमारे आदरणीय प्रशांत अम्बुलकर जी लिखते हैं कि बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, ज्योति जी के पसंद, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। राधा कृष्ण गोपी लिखते हैं कि बहुत ही सुपरहिट लाजवाब डिमांड है, थैंक यू ज्योति जी। और संध्या पटेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जी। नंदनी वाली लिखते हैं कि ज्योति जी की पसंद, वाह वाह बहुत ही प्यारी पसंद, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रविंद्र गोरखपुरी जी लिखते हैं कि वाह लवली सॉन्ग, टू गुड, मजा आ गया सुन के। और ओके बहुत ही प्यारा नगमा है, थैंक यू सो मच इसके लिए। ओके जी, और ओके, और यहाँ पे आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि तुम्हारी परछाई भी जब मेरे पास से गुजरती है, इस दिल के हर एक दीवार दीवानों से धड़कती है, जरा जरा इस दिल पर हाथ रख कर सुनो मेरी इस बेताबी को, ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कती है। अच्छा ये बात है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि मैं दुआ करता हूँ कि आपको किसी की नजर ना लग जाए, मैं इस बात से डरता हूँ, है कि नहीं। और नंदलाल जी लिखते हैं कि वाह लाजवाब पसंद है। और गोविंदा खंडाते जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी गोविंदा खंडाते जी। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं सुनवाने वाला हूँ, और ये डिमांड लेके आए हुए हैं हमें सर्वजीत सेठी जी। सर्वजीत सेठी जी सुनना चाहते हैं ये दुआ है मेरी रब से कि तुझे आशिकों में सबसे, और इसी गाने की डिमांड हमारे अरुण यानी कि मंडल जी ने भी किया हुआ है। तो अरुण मंडल जी और सर्वजीत सेठी जी आप दोनों के पसंद पे इंजॉय कीजिए ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद है।

0: बिल्कुल, ये दुआ है मेरी रब से, मेरी भी दुआ है कि ये दुआ है मेरी रब से कि तुझे आशिकों में सबसे, शायरों में सबसे, हर दोस्तों में सबसे, सब मैं ही पसंद हूँ, सिर्फ मैं। ओके, और फीडबैक भी आए हुए मेरे पास बहुत सारे। ओह माय गॉड, मैं क्या करूँ आज के फीडबैक के लिए, इतने ज्यादा ज्यादा है कि मैं थक जा रहा हूँ। रवि मोहड़े जी लिखते हैं कि बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, बहुत ही लाजवाब ज्योति जी का गाना, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू ज्योति जी। एंड बीके पंच लिखते हैं कि सर जी बहुत ही सुपर फरमाइश, ये दुआ है मेरी रब से, मजा आ गया। और ये फिर
1: जय मान सर जी, अनुण मंडल जी और सर्वजीत सेट्टी जी, दोनों भाई का मिली जुली फरमाइश में शामिल किए, दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, धन्यवाद आपका भी। और साथ ही साथ यहाँ पे दत्तक्रम जी लिखते हैं कि अरुण मंडल जी, सर्वजीत सेट्टी जी, आप दोनों का गाना मुझे बहुत बेहतरीन लगा है। और उनके बाद यहाँ पे लिखते हैं, क्या नाम है इनका, एमडी नाजिम जी, ऑल टाइम मेरा फेवरेट सॉन्ग है, अच्छा सच में। ओके जी, और यहाँ पे यानी कि प्रमोद कुमार जी लिखते हैं, वाह वाह ऑसम, बेहतरीन सुपर हिट फरमाइश के लिए, थैंक यू सो मच। ओके, और राजीव चौधरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। लिखते हैं कि रेडियो हॉट स्टार सबसे हट के जो दीवाना बना दे, नमस्कार नमस्कार सभी दोस्तों को। और अजय भगत जी लिखते हैं कि लाजवाब गाना चल रहा है बिल्कुल। और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड, वाह मजा आ गया सुन के। एंड यहाँ पे गजानन सुनकार जी लिखते हैं कि ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद है, बहुत ही शानदार ये नगमा सुनकर मिला, मजा आ गया सुन के। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि ये दुआ है मेरी रब से, ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा नगमा है ये। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा ये डिमांड, वाह मजा आ गया सुन के। और नंदिनी मां लिखते हैं कि ये भी गाना सुपर एक नंबर। और ये फीडबैक थोड़ा सा सुन लेते हैं।
2: ये दुआ है मेरी रब से, ना चाहता हूँ कि ना आप दूर जाना ना हम दूर जाएंगे, अपने अपने हिस्से की दोस्ती निभाएंगे, आप स्टूडियो से हमें याद करते रहना, हम घर बैठे मुस्कुराएंगे।
0: रूपचंद को, क्या बात है क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और प्रशांत अम्बुलकर सर जी लिखते हैं कि ये दुआ है मेरी रब से, ये पसंद मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगी है। और ओके, अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ, और ये डिमांड दत्तक करम जी का है। तो दत्तक करम जी सुनना चाहते हैं, मेरे दिल का पता तुम्हें किसने दिया, भाई किसने दिया, मैं भी यही पूछना चाहता हूँ, हॉट स्टार का पता किसने दिया।

भाई इनको तो दिल का पता मिल गया, और घर जब दिल का पता मिल गया तो घर का पता भी मिल गया है, और घर का पता लेकर आए हुए हैं हमारे गोविंदा खंडादे जी अपने डिमांड के साथ। तो एंजॉय कीजिए, गोविंदा खंडादे जी आते हैं तो दोनों का फीडबैक एक साथ शामिल करते हैं। तो गोविंदा खंडादे जी एंजॉय द ट्रैक।

0: बिल्कुल घर का पता मुझे सब याद है और लेकिन फीडबैक भी यहाँ पे आ गया है, इसको भी तो शामिल करना है ना ही चीज। देखते हैं कि वक्त बदलेगा, जमाना बदलेगा, बदलेंगे ये नजारे पर कभी नहीं हम बदलेंगे, ये चाहत हमारी और साफ और पाक रहेगी ये मोहब्बत हमेशा हमारी, क्योंकि मेरे दिल में आईना में है वो तस्वीर तुम्हारी। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी नाही जी। और यहाँ पे गजानंद लिखते हैं कि दत्तक रंजी के पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। और बेटे कुमार लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत नगमा है, मजा आ गया सुन के। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि दत्तक रंजी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, थैंक यू सो मच। इसी बात पर राधा कृष्ण को भी लिखते हैं बहुत ही बेहतरीन पसंद है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और ओके जी। और अमीना खान जी लिखते हैं बहुत ही सुंदर पसंद है, थैंक यू सो मच। सरवजीत शेट्टी जी लिखते हैं कि क्या कहते हैं,
1: धन्यवाद अमन सर जी, आपने हमारा गीत चलाया और जिन्होंने हमारे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सभी गीत लाजवाब चल रहे हैं तो सुनते रहे रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरवजीत सेठी फाजिल का पंजाब से।
0: आज आपकी एनर्जी को क्या हुआ सरवजीत सेठी जी, ये फीडबैक चलते हैं।
2: मेरे दिल का पता तुझे किसने दिया, मेरे दिल का पता तुझे किसने दिया, क्या तुम भी अकेले थे मेरी तरह जानम।
3: वाह बहुत लाजवाब गाना
0: जी जी।
3: पसंद करने के लिए दत्ता कदम को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं नंदलाल यादव।
0: ओके जी। और यहाँ पे अरुण मंदर जी, अर्जमन जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। दत्ता जी लिखते हैं कि गोविंदा खन्ना जी गाना मुझे अच्छा लगा है और मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी ये लिखते हैं कि नहीं जी आपके घर के पता नहीं मालूम है और याद कैसे रहेगा, ब्यूटीफुल सॉन्ग, मैं पहली बार ये सुना हूँ और बहुत अच्छा लगा। तो मैं बता दूँ कि मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, बस ये सिवान बिहार में ही है, बहुत बहुत एकदम आसान है आना, बहुत ही आसान है। वैसे अगला जो गाना है वो मैं प्ले करने वाला हूँ और ये भाई चाहते हैं कि भाई यानी कि कॉलेज में मतलब रोमांस का पीरियड हो, इस गाने को लेकर आए हुए हैं हमारे, मतलब इसकी डिमांड आई हुई है हमारे आदरणीय नाम में प्रशांत अमृतकर सर जी।

बिल्कुल इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो दो दोस्तों की है, लेकिन फीडबैक के बाद में शामिल करूंगा। गोविंदा जी लिखने के बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, और जितेंद्र जी लिखते बहुत ही शानदार गाना सुनने को मिला है। सुनता जी लिखते हैं कि दोनों फरमाइशें बहुत ही ब्यूटीफुल लगी, लाजवाब लगी है। और प्रमोद और आदरणीय प्रशांत अमुलकर जी लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। ज्योति जी लिखते हैं कि सभी गाने एक से बढ़कर एक हैं। बी अब अगला सुनिए, अब तो बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आने वाले हैं। एक दो गाने ऐसे हैं जो इसमें बीच में शामिल करना जरूरी था, इसलिए मुझे शामिल करना पड़ा। राधाकृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड, थैंक यू सो मच। इसी बात पे अगला जो डिमांड है एक अमीना खान जी का है, और अमीना खान जी के साथ साथ है बिट्टू कुमार जी, तो आप दोनों का है लव रैप, एंजॉय द ट्रैप।

0: तो है।
1: एक दिन तेरा दिल भी मचल
0: गया, मचल गया, मचल गया। वेलकम बैक, और फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं। और अमीना जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और उनके बाद यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक
2: ताऊ जी बहुत ही अच्छा सॉन्ग चल रहा है।
0: अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है बेटा? और यहाँ पे कुंता बेने जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की पसंद मुझे बहुत लाजवाब लगे, थैंक यू सो मच। और संजय पटेल जी लिखते हैं वाह सुन के तो मजा आ गया, यानी कॉलेज के दिन याद आ गए बिल्कुल। हाँ, और ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
3: गुड इवनिंग आरजे अमन सर जी। अमन सर जी मैं फूले भक्त संजू भाऊ।
0: वेलकम।
3: अभी जो फरमाई चल रही है हमारे अमीना खान जी और बिट्टू कुमार जी, इन दोनों की मिलजुल फरमाइश, उनके पहले आपने प्रशांत अम्बुलकर जी इनकी फरमाइश चलाई सर, उनके पहले गोविंदा खंडाड़े जी, उनके पहले दत्ता कदम जी, इन दोनों की आपने बैक टू बैक फरमाइश चलाई सर, उनके पहले सर्वजीत शेट्टी जी और अरुण मंडल जी, इन दोनों की आपने मिलजुल फरमाइश चलाई सर, उनके पहले ज्योति घटपटे जी उनकी फरमाइश चलाई सर, और उनके पहले आपने हमारे आदरणीय अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्मराम पाटिल जी, सैयद इनू जी, प्रकाश डोने जी और आरिफ सिंधी जी, इन छह दोस्तों की आपने मिलजुल फरमाइश चलाई सर, उनके पहले हमारे मित्र जो एक गीत चला सर दिल जिगर नजर क्या है, इनका मैं नाम नहीं सुन पाया, वो फरमाइश चलाई सर, और उनके पहले आपने हमारे ग्रुप फरमाइश चलाई सर, हमारे ग्रुप फरमाइश के पहले अशोक पाल जी, हमारे मित्र एम डी नाजिम जी, इन दोनों की आपने बैक टू बैक फरमाइश चलाई सर, उनके पहले डिम्पी जी, सुनील कुमार जी और राधा कृष्ण गोप जी, इन तीनों दोस्तों की आपने मिलीजुली फरमाइश चलाई सर। और आज के कार्यक्रम का आपका ओपनिंग गीत अमन सर जी, आज आप देर आए दुरुस्त आए, आज का कार्यक्रम भी स्टार ऑफ द वीक मजा आ रहा है और सुपर सुपर से ऊपर हो रहा है, क्योंकि आज के जो मेहमान है सर राहुल राय, पृथ्वी, अतुल अग्निहोत्री और रोनित राय, ये चारों दिग्गज कलाकारों की फिल्म एकदम बढ़िया और सभी फिल्मों के गीत एकदम सुपर हिट। और अमन सर जी आपका प्रस्तुति कार्यक्रम एकदम अनोखे अंदाज में हो रहा है, सभी को शुक्रिया बोलूँगा इतना अच्छा पार्टिसिपेट करने के लिए, और स्पेशल धन्यवाद हमारे जाकिरी मुलानी जिनको। मैं फूले भक्त संजू भाऊ, रेडियो स्टार जो दीवारा बना दे, अमन जी के साथ।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी फूले भक्त संजू भाऊ जी, और राधा कृष्ण को भी देते बहुत ही लाजवाब डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। इस गाने को सुनकर तो मजा ही आ गया। इस खानम जी लिखते हैं कि आप सबको ऐसा अपने घर का अच्छा ओके ओ माय गॉड, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और यहाँ पे नाहिद जी लिखते हैं कि लोग पूछते हैं कि मुझसे तन्हाई का सबब, उन्हें पता क्या है कि मैं तन्हा कहाँ रहता हूँ, जब भी आंखें बंद करता हूँ तो तू पास होते हैं और तू मुझे बस तेरे ख्याल का ही वो नशा रहता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और रवि महर जी लिखते हैं कि अमीना खान जी और बिट्टू जी ओहो लाजवाब सॉन्ग, मतलब मैं क्या ही बोलूं, जादू चल गया इस गाने का और मजा आ गया सुन के। और कुछ कह रहे हैं सुनते हैं।
4: ना पाहिलं तुझे डोळ्यां जादू का डिसेंबर, एक डिसेंबर टू त्या दिवशी झाला फीवर सुरू का डिसेंबर, एक डिसेंबर टू। अच्छा, सुपर लाजवाब सॉन्ग, मजा आ गया भाई।
0: जी जी बिल्कुल। आपको आपको तो आता है ना, मतलब चूंकि ये मराठी आता है ना इसलिए। वैसे अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, इसमें इन तीन दोस्त शामिल है, अजय भगत जी हैं, हीरामन खियार जी हैं और कुंता बेनी जी हैं। आप सभी की एक ही पसंद है और वो है अच्छा इंडिया जानता है कि हम तुम पे मरता है, बिल्कुल मरता है भाई। वैसे पहले ऑडियो तो एक ही आदमी का ही हुआ है हीरामन जी के, बाकी लोग का तो मैसेज है, तो सुन लेते हैं इनके ऑडियो में क्या कहते हैं हीरामन खिराड़े जी।
5: नमस्कार आरजे अमन सर जी, गुड इवनिंग। मैं हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से, आज स्टार ऑफ द वीक में आज के चार मेहमान है तो मैंने चुन लिया है रोनित राय को, और रोनित राय के ऊपर एक गीत है सर, गीत के बोल है फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया। तो इस गीत के लिए पहले तो आरजे अमन सर जी आप शामिल है, आपकी सुंदरता की मुहूर्त, और आरजे वंशिका जी, और कुछ मेरे प्यारे मित्र है जैसे कि अनंत कुलकर्णी जी।
0: हमें पता है कि आपने बहुत दोस्तों का नाम लिया है, लेकिन सभी दोस्तों का नाम आपने लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऑडियो ज्यादा नहीं प्ले कर पाऊंगा क्योंकि गाना बहुत ही प्यारा है ना, इसलिए अखा इंडिया जानता है कि हम तुम पे मरता है। इंजॉय द ट्रैक।

0: बिल्कुल, दिल क्या चीज है जानम जानते हैं नाम करता है, और अब तो प्यार करना ही पड़ेगा ना गजानन जी से, कि दोस्त हीरामन जी के पसंद बेहतरीन लगे हैं, लाजवाब लगे, थैंक यू सो मच। एंड और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि तीनों दोस्तों की पसंद लाजवाब, और प्रशांत अम्बुलकर जी लिखते हैं कि अच्छा इंडिया जानता है सुपरहिट पसंद, ये तीनों मित्रों की पसंद दमदार, हम लोग भी सुन रहे हैं, संगीता जी भी सुन रही है। उनकी माता जी का सेहत ठीक नहीं होने की वजह से फीडबैक नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, बस वो ठीक हो जाए जल्द से जल्द, और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: वाह, एकदम जबरदस्त गाना सुनवाया है, सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया है। और ये फिल्म मैं जब रिलीज हुआ था 7 बार लगातार देखे थे इसको, 7 दिन रोज दिन,
0: ओ माय गॉड,
1: बहुत दिल को सुकून मिलता था।
0: अच्छा,
1: तो फिर से एक बार धन्यवाद है MD फैज आलम मोहिउद्दीन नगर।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और रवि मोहरे लिखते हैं कि सुपर लाजवाब, हमारे परमित हीरामन जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद गाने में याद रखने के लिए। और राकेश शर्मा लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग, सभी गाने आज को एक से बढ़कर एक है। संजू भाजी लिखते हैं कि हीरामन जी, कुंता बेनी जी और एक और दोस्त कौन थे, अब तो उनका नाम मुझे भी फिर से निकालना पड़ेगा, अब मैं भी भूल गया हूँ लेकिन एक और दोस्त, अच्छा ठीक है मैं आपको देता हूँ, उनका नाम था अजय भगत जी। ओके चलिए, मैंने निकाल दिया, कोई बात नहीं है, अजय भगत जी नाम था उनका। ओके, और इसी बात पर अगला जो फीडबैक है किनका है, राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाने का डिमांड, मजा आ गया सुन के, दिल खुश हो गया एकदम। हीरामन जी लिखते हैं कि मेरे फरमाइश को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। और कुंता जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी, आपने हमारे गाने को प्ले किया, सभी दोस्तों का धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, अच्छा इंडिया जानता है कि हम तुम पे मरता है और अब तो हमको हुआ है प्यार, भाई भी यानी कि प्रकाश जी सुनना चाहते हैं ये इस गाने को और सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो भाई प्रकाश जी एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल ओ मेरी महबूबा, वैसे फीडबैक भी बहुत सारे आए हुए हैं, शामिल करता हूँ। अजय भगत जी लिखते हैं कि अमर जी थैंक यू सो मच, आपने मेरा भी गाना प्ले कर दिया था। और राधे कृष्ण को लिखते हैं कि इस गाने की डिमांड में तो मेरा दिल धड़क गया है, क्या बात है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि हमको हुआ है प्यार, लाजवाब पसंद है, थैंक यू सो मच। और कुंता बेन जी लिखते हैं कि शानदार फरमाइश भाई, यानी प्रकाश जी, थैंक यू सो मच आपका। गजानंद जी लिखते हैं कि भाई प्रकाश जी और रवि महर जी सभी की पसंद बहुत अच्छी लगी, और कुंता बेन जी की भी पसंद बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच उनको भी। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि प्रकाश जी, रवि महर जी सभी की पसंद बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब। एंड काजल झक्का जी क्या कहती है,
1: आपकी मोहब्बत हमेशा मुझ पर उधार रहेगी, आपकी मोहब्बत हमेशा मुझ पर उधार रहेगी, मेरी चाहत जीते जी आपकी तंगबगार रहेगी, मेरी चाहत जीते जी आपकी तंगबगार रहेगी, निभाया है इश्क जिस शिद्दत से आपने, निभाया है इश्क जिस शिद्दत से आपने, कि मैकर भी मेरी जिंदगी आपकी तंगबगार रहेगी, कि मैकर भी मेरी जिंदगी आपकी तंगबगार रहेगी,
0: क्या बात है।
1: थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना अच्छा प्रोग्राम चंगाने के लिए, और सभी दोस्तों का गाना बहुत अच्छे अच्छे बज रहे हैं, और मैं भी सुन रही हूँ काजल सीतामढ़ी बिहार से।
0: ओहो, क्या बात है क्या बात है। और लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि मोहब्बत की राहों में छोड़ाए हैं निशान, मोहब्बत की राहों में छोड़ाए हैं निशान, और हर मोड़ पर है तेरी यादों का सामान, और दिल तो है तेरा और पर ना जाने क्यों उदास है, दिल तो है तेरा पर ना जाने क्यों उदास है, शायद मोहब्बत का यही है अंजाम, है ना। वैसे फिलहाल आपका फीडबैक बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच काजल झक्का जी। अभिषेक तिवारी जी जुड़े हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और प्रशांत अमरकर जी लिखते हैं कि रवि महर जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी पसंद बहुत अच्छी लगी है, ये फीडबैक क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
2: मैंने ये दिल
0: अच्छा जी
2: तुझको दिया, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा। जी बहुत खूबसूरत डिमांड था ये, लेकिन सुंदरता की मूरत जी का फैसला नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ उनसे कहिए कुछ फैसला सुनाए जल्दी, ताकि हम लोग पिछले गाने की तर्ज पर डांस वांस कर सके कुछ। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए और पिछले वाला गाना के लिए भी, एमडी फैज आलम मोहिद्दीन नगर।
0: ओके जी, अगला जो डिमांड है वो भी बहुत प्यारा है, लेकिन पहले और कुछ फीडबैक भी तो शामिल कर लूं। और यहाँ पे ना है हमारी नंदनी मालिक की है कि सभी गाने आज के बहुत प्यारे हैं। जी माजी सुनते रहिए, अभी और भी प्यारे प्यारे गाने आने वाले हैं, आई प्रॉमिस। नाहिद जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल पसंद के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद देना चाहूंगी मैं। और नाजिम जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो चार दोस्तों का है, और उसमें है यानी कि सोनू गौतम जी हैं, और यानी प्रियंका जी हैं, हुकुमचंद जांगर जी, नहीं हुकुमचंद जी नहीं है, हुकुमचंद जी का तो गाना शायद कुछ अलग उन्होंने चेंज किया हुआ है, मुझे देखना पड़ेगा। और अनिशा सिंधी जी हैं, तो अनिशा सिंधी जी और सोनू गौतम जी और प्रियंका जी आज सभी के पसंद पे, हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा।

0: बिल्कुल कितना भी छुपा लो लेकिन लोगों को तो पता चल ही जाएगा ना, क्योंकि प्यार वो खुशबू है जो चारों तरफ फैल जाती है, उसकी खुशबू। ओके, और फीडबैक भी आए हुए मेरे पास। फूला भक्त जी लिखते हैं कि रवि भाव तुमची आवड़ मला खूब आवड़ वाली, नहीं पता मुझे शायद इन्होंने क्या कहा है। और यहाँ पे ये क्या कहते हैं सुन लेते हैं इनकी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी, तहे दिल से शुक्रिया हमारा गाना प्ले करने के लिए, और सभी दोस्तों का भी तहे दिल से शुक्रिया गाने में फीडबैक देने के लिए और हमारे गाने को पसंद करने के लिए। मैं रवि मोहाड़े बैतूल से।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और सर इस वक्त क्या कहते हैं?
2: जय अमन सर जी, चार आदमी का मिली जुली फरम ऐसे शामिल किए हैं, चारों आदमी को धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी, थैंक यू, वेलकम जी। और आपका रामकेश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है रामकेश जी। और लिखते हैं प्रोग्राम बहुत शानदार चल रहा है। नाहिद जी लिखते हैं कि चाहत एक ऐसा हसीन एहसास हो तुम, जैसे यानी कि तपती धूप में वो सावन की पहली फुहार हो तुम, और अब तो मुझे यानी किसी चीज की तमन्ना नहीं रही इस दिल को, क्योंकि मेरी बंदगी मेरी इबादत और मेरा पूरा जहान हो तुम। वाह क्या बात, लाजवाब गाने की डिमांड। यानी यहाँ एम डी नाजिम जी लिखते हैं कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। नाजिम जी लिखते हैं कि ये भी गाना, एमडी फैज जी लिखते हैं कि ये भी गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और नाजिम जी ने कहा कि मेरा सबसे यानी प्यारा गाना है, फेवरेट गाना है। एंड यहाँ पे कुंता जी लिखते हैं कि ये तीनों दोस्तों की मिलजुली फरमाइश बहुत ही शानदार लगी है, थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक सुन लेते हैं थोड़ा सा।
3: ये प्यार हमारा रब जाने क्या रंग लाएगा, से मिलने का मजा तो आएगा। अमन सर जी आपने मेरी पसंद का गाना सुनाया, आपको दिल से धन्यवाद। रूपचंद गोयल बाड़मेर राजस्थान।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये सभी दोस्तों की पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। राधा कृष्ण को देखते हैं कि हम लाख छुपाए प्यार मगर लेकिन रेडियो हॉट स्टार को, अच्छा हम लाख छुपाए रेडियो हॉट स्टार को दुनिया को पता चल जाएगा, बहुत ही प्यारा गाना है, थैंक यू सो मच। ओके जी, प्रमोद जी लिखते हैं कि रिस्पेक्टेड रवि मोहाड़े जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। और अच्छा ओके, और यहाँ पे लिखती है अमीना खान जी की बहुत ही प्यारी पसंद है, थैंक यू सो मच। ओके जी, अगला जो डिमांड है वो हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया के पर, लेकिन अब भाई यानी कि कॉलेज बंद होने वाला है, और कॉलेज बंद होने वाला गाना लेके आई हुई है यानी काजल झा काजी सीतामढ़ी बिहार से, सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं, स्पेशली डेडिकेट सिर्फ मिठू मियाँ जी के, सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए काजल जी।

0: वेलकम बैक, फीडबैक भी आए हुए हैं बहुत सारे। मंगेश जैसे मुझे देंगे अच्छा भी दोस्तों की पसंद, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। और ये क्या कहते हैं ये सुन लेते हैं।
1: जी भाईजान, नाम तेरे नाम का बैक टू बैक गाना सुनने को मिल रहा है और ये गाना काजल जी के पसंद का था, तो ये भी गाना उनके नाम की तरह एकदम झकास।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको। और यहाँ पे कुंदा मैंने लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश, थैंक यू सो मच काजल झक्का जी। और नाजिम भी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग है बिल्कुल। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही शानदार, ये शानदार पसंद है, थैंक यू सो मच। रूप कुमार जी लिखते हैं कि सर जी इस गीत ने तो मुझे कॉलेज के दिनों को याद दिला दिया बिल्कुल। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच काजल झक्का जी। नाहिद जी लिखते हैं कि तुम गजल बन जाओ मैं तुम्हारी आवाज बन जाऊं, तुम ख्वाब बन जाओ मैं हर रात का राज बन जाऊं, यूं ही साथ में लिखते रहे मोहब्बत की दास्तां, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी बन जाओ और मैं तुम्हारा हमराज बन जाऊं। वाह वाह क्या बात है। और रामकेश जी लिखते हैं वेरी नाइस फरमाइश। एंड बाबूलाल जी लिखते हैं काजल जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो किशन पाल शाक्य जी का है, सुनना चाहते हैं, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी

बिल्कुल टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। वैसे फीडबैक आ गया है, लेकिन फीडबैक मैं बाद में शामिल करूंगा, क्योंकि अगला गाना जो है ना वो बहुत ही प्यारा है, और उस गाने को जो डिमांड आई है हमारी किस दोस्त की,

ओके, इस गाने का डिमांड हमारे किए हैं एमडी नूर आलम जी। भाई तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है। इंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक और फीडबैक भी मेरे पास आ चुका है। मेरे पास बहुत ज्यादा किसी को भी लाजवाब डिमांड, लाजवाब नगमा, दिल खुश करने वाला। थैंक यू सो मच। और एवरी फैची वाह, ये भी गाना सुपर से ऊपर वाला है। और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत खुश हुआ सारे आज के नगमे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी को, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि तू मेरी जिंदगी है, सुपर पसंद, ओके जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, बहुत ही प्यारा नगमा, मजा आ गया सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रकाश जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: हर दर्द दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे।

0: चाहत तू ही आस की है तू। अमन सर
1: जी जी,
0: बहुत सुपर सॉन्ग है आज की मूवी का।
1: जी जी, आज के सभी गाने बहुत ही लाजवाब है। ना ही जीते कि मेरी जिंदगी की किताब का पहला पन्ना हो तुम, मेरी जिंदगी की किताब का पहला पन्ना हो तुम, और जिसे मैंने हर रोज बे इंतहा शिद्दत से पढ़ा है। लोग ढूंढते होंगे दुनिया में मोहब्बत के मायने, मेरे लिए तो मोहब्बत का पहला और आखिरी इन लव्स ही हो तुम। ओ हो, क्या बात है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त की। एंड और यहाँ पे अमीना जी लिखते हैं कि ये भी प्यारे पसंद, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और राम कुमार मिस्त्री जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और ओके, थैंक यू सो मच राम कुमार मिस्त्री जी आपके इस यानी प्यारे से लफ्ज के लिए। राम के जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो है हमारे किस दोस्त का, जरा सा देखता हूँ। ये सुनील कोंडे जी है। सुनील कोंडे जी क्या सुनना पसंद करते हैं, आज इन्होंने ऑडियो भेजा है। सुनील कोंडे जी, तो सुनील कोंडे जी सुनते हैं आपकी पसंद को।
2: मैं सुनील कोंडे बात कर रहा हूँ मुंबई महाराष्ट्र से। मुझे एक गीत सुनना है, फिल्म आशिकी गाने के बोले नजर के सामने, ये गाना सुनना है। ये अमन सर जी आपको डेलीगेट है, आपकी सुंदरता के मुहूर्त को डेलीगेट है, बाकी सभी श्रोता सुनने वाले को डेलीगेट है।

0: बिल्कुल कोई रहता है वो हो तुम। और फीडबैक भी आया हुआ है गजानंद जी लिखते हैं कि सुनील कोंडे जी के पसंद नजर के सामने जिगर के पास अच्छा लगा। राम कुमार मिश्री लिखते हैं कि नजर के सामने जिगर के पास तो वाह लाजवाब एकदम जबरदस्त पसंद। थैंक यू सो मच मजा आ गया सुन के। और नाही जी लिखते हैं कि आंखों में नींद नहीं बस तेरा ही ख्याल है इस बेताबी में दिल का अजीब सा हाल है। लोग पूछते हैं मुझसे कि मेरी मुस्कान की वजह अब उन्हें मैं कैसे बताऊं कि ये सब तुम्हारी मोहब्बत का कमाल है। आहा क्या बात है ये लिखा है कुछ हमने। और ये क्या कहते हैं
1: बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से में। अमन सर जी आज सारे गाने एक से बढ़कर एक है सुन के मजा आ रहा है। रूपचंद गोयल बाड़मेर राजस्थान।
0: ओके जी। और यहाँ पे काजल झका जी क्या कहते हैं।
2: थैंक यू सर जी गाना बजा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको और सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। मैं काजल सीतामढ़ी बिहार से।
0: ओके जी बहुत बहुत वेलकम है। MD5 जी वाह एकदम लाजवाब नगमा सुनने को मिला मजा आ गया। मोगम लिखते हैं कि मोगैम्बो खुश हुआ। अच्छा जी मोगैम्बो खुश हुआ। एंड यहाँ पे राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही सुपर नगमा लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। ज्योति जी लिखते हैं कि सभी गाने सुपर हिट लाजवाब क्या ही कहें दिल से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पर अगला जो नगमा है वो दो दोस्तों की पसंद एक सुभाष तिवारी जी है जो जितेंद्र सिंह जी है। मेरा सनम सबसे प्यारा है बिल्कुल सबसे प्यारा है।

वेलकम बैक। और सच में मेरा सनम सबसे प्यारा है, और यहाँ पे रवि मार्जी लिखते हैं काजल जी का और फीडबैक मुझे झक्कास लगा है, थैंक यू सो मच। और अकुंता जी लिखते हैं कि ये नजर के सामने जिगर के पास अमन सर जी लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। और मीना कुमारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। मीना कुमारी जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत सॉन्ग प्ले हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ओके जी। और गजानंद जी सुभाष तिवारी जी जितेंद्र जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। और नंदनी मां लिखते हैं कि हमारे लिए हमारा बाबू बहुत प्यारा है, ओह माय गॉड थैंक यू सो मच माँ जी। एंड यहाँ नहीं जी लिखते हैं कि हर आहट पर लगता है कि तुम आ गए, हर आहट पर लगता है कि तुम आ गए, और मेरी हर सोच पर तुम इस कदर छा गए। अब तो ये बेताबी हद से गुजरने लगी है कि जब से तुम इस दिल की धड़कन बन गए। अच्छा, और मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश है, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, आई लव दिस सॉन्ग। एंड राम कुमार मिस्त्री लिखते हैं कि नमस्कार अमन सर जी, और आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो आज के थीम पे नहीं है, आज का जो थीम है उस पर भेजिएगा तब जाके होगा, मैंने उसको कैंसिल कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया है वैसे भी। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि अच्छा ये तो गाना सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, ओके थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो दिगंबर जी का है, दिगंबर जी सुनना चाहते हैं, जब से हम तेरे आशिक हुए आशिकी कब मजा आ गया, मुझे भी मजा आ गया गाना सुनकर।

0: बिल्कुल अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, इनका सुनीता गोप जी, बिल्कुल इनका गाना मैं प्ले करूंगा। लेकिन फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे हुए हैं। ओ माय गॉड, नहीं लिखते हैं कि तेरी सादगी को निहारने का मजा आ गया है, इस दिल को तुझ पर हारने का मजा आ गया है, और यूं तो जी ही रहे थे हम इस दुनिया में, पर तुझसे दिल लगाने का बाद जीने का मजा आ गया। अच्छा जी, सॉरी। और यहाँ पे लिखते हैं राधा कृष्ण गोप जी के बहुत ही बेहतरीन डिमांड, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस प्यारे से डिमांड के लिए। और रविंद्र गोरखपुरी जी लिखते हैं, सर जी इस गाना सुनने को भी दिल से सुनकर इस गाने को मजा आ गया। और यहाँ पे बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत अच्छा लगा इस गाने को सुनकर, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे इनके प्रशांत अमरुका जी लिखते हैं कि जब से हम तेरे आशिक बने आशिकी का मजा आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को। और गजानंद जी लिखते हैं कि जब से हम तेरे आशिक बने इस सदा गीत को सुनने को मिला और मजा आ गया। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दिगंबर जी के पसंद मुझे ऑसम लगे, थैंक यू सो मच दिगंबर जी। एंड कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड, थैंक यू सो मच दिगंबर जी। और शिल्पा बेन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है शिल्पा बेन जी। लिखते हैं कि सभी सॉन्ग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। अनिल कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है अनिल कुमार जी। और लिखते हैं कि सभी गाने ब्यूटीफुल चल रहे हैं, हरिद्वार वाले अनिल कुमार जी। मीना जी लिखते हैं वाह क्या खूबसूरत नगमा है, थैंक यू सो मच। बाबूलाल जी लिखते हैं कि दिगंबर जी का पसंद मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। राम कुमार मिश्री लिखते हैं कि आज के सभी गाने एक से बढ़कर एक, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। और अमीना जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही शानदार गाना, इस गाने को सुनकर तो दिल खुश हो गया है और मजा आ गया सुन के। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: क्या बात है अमन सर जी, जितनी भी तारीफ करूं बहुत कम है, बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग, विश्व नंबर वन, क्या बात है। हमारा प्यारा प्यारा अमन सर और उसके साथ रेडियो ऑर्केस्ट्रा और रेडियो गाना, क्या बात। जब से हम तेरे आशिक बने आशिकी का मजा आ गया, बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं, मजा आ जा रहा है।
0: बिल्कुल सभी प्यारे गाने आज हैं ही। एमडी फैज लिखते हैं जी दिल खुश करने वाला ये डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। एंड मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि अर्जमन जी सभी दोस्तों की पसंद बहुत ही प्यारी प्यारी लग रही है। इसी बात पर सुनीता गोप जी इनका डिमांड जो है बहुत ही प्यारा, थोड़ा हटकर होता है, आज इन्होंने हटके भेजा है।
2: ऐसे ही और सदाबहार रेडियो।

बिल्कुल होते होते प्यार हो गया है, वैसे फीडबैक भी आ गया है, लेकिन फीडबैक में बाद में शामिल करूंगा। फिलहाल मैं गाना प्ले करने वाला हूँ नंदलाल यादव जी का। और नंदलाल यादव जी ये सुनना चाहते हैं कि तूने दिल मेरा ले लिया। जी, तो तूने दिल मेरा ले लिया तो भाई लिया, तभी तो प्यार हुआ ना। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

बिल्कुल तूने मेरा दिल ले लिया और गाना मुझे बहुत ही पसंद है। वैसे ये गाना मेरे पास पहले भी था, मैं पहले भी सुन चुका था, लेकिन गाना इतना प्यारा है कि आज के बने हैं विनर हमारे क्या नाम है नंदलाल यादव जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और सुनीता गोप जी जीते की अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और मीना जी वाह ऑसम फरमाई, थैंक यू सो मच नंदलाल यादव जी। और राधा कृष्ण गोप जीते हमारे श्रीमती जी का डिमांड बहुत ही प्यारा लगे, थैंक यू सो मच। और राहुल पासी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और देखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना सुनने को मिला है मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि नंदलाल जी के पसंद मुझे बहुत बेहतरीन लगी है, थैंक यू सो मच नंदलाल यादव जी। नहीं जी लेते हैं कि मेरी हर सुबह का पहला ख्याल हो तुम, मेरी हर रात का आखिरी ख्वाब हो तुम। लोग ढूंढते होंगे वफा के मायने इन किताबों में, और मेरे लिए तुम मोहब्बत का मुकम्मल जवाब हो तुम। वाह वाह वाह क्या बात है, लाजवाब पसंद। मीना कुमारी जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि है यानी कि इश्क है या इबादत अब कुछ समझ में नहीं आता। एक खूबसूरत ख्याल हो तुम जो दिल से नहीं जाता, और कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब तुम मेरी मोहब्बत हो या इबादत। इबादत जो भी हो बहुत ही प्यारे हो, अब मेरी जिंदगी बन गए हो तुम। वाह वाह वाह मीना जी वाह, बहुत ही प्यारा। एंड बाबूलाल जी लिखते हैं कि नंदलाल जी के पसंद मुझे बहुत अच्छा लगा है। कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन पसंद। यहाँ पे सुनीता गोप जी का, नंदलाल जी का, सभी के पसंद, थैंक यू सो मच। अनिल कुमार जी यहाँ पे लिखते हैं कि वाह थैंक यू सो मच अमन जी इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए, थैंक यू सो मच। और MD5 जी लिखते हैं कि जी ये भी गाना लाजवाब है। एंड मोगैम्बो खुश हुआ, दिल से धन्यवाद देते हैं, अच्छा लगा ये गाना। एंड सुनील नाम है इनका, सतीश कुमार इन प्रजापति जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है सतीश कुमार प्रजापति जी। और रवि महाराज जी लिखते हैं कि तूने मेरा दिल ले लिया, ये लाजवाब गाना। नंदलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अनिल कुमार जी लिखते हैं कि अच्छा ओके कोई बात नहीं, फिलहाल अगली जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो है 91-35-84-12-32 यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक। और अगला जो डिमांड है वह अभिषेक तिवारी जी का है। सुनना चाहते हैं सुन सजना, तेरे बिना जीना मुश्किल है।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं। रवि महर जी लिखते हैं कि सुन सजना वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच। गजाना जी लिखते हैं कि अभिषेक तिवारी जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई। और दिगंबर जी लिखते हैं कि अच्छा, धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत वेलकम है धर्मेंद्र सिंह जी। और मीना जी लिखते हैं कि हम चाह कर भी साबित नहीं कर पाए कि यानी कितनी मोहब्बत है तुमसे, हम चाह कर भी साबित नहीं कर पाएंगे कि कितनी मोहब्बत है तुमसे, क्योंकि सच्चा प्यार साबित नहीं किया जाता है, सिर्फ दिल से महसूस किया जाता है। इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, नहीं प्ले करना चाह मतलब था लेकिन अब मैं करूँगा, इसी बात पर आपकी सीनी की शायरी पर, वो भी गाना है शाहिद अंसारी जी का, हमने खामोशी से तुम्हें दिल में बसा रखा है। इंजॉय द ट्रैक, मुझे बहुत पसंद है।

बिल्कुल हमने खामोशी से दिल में बसाया है, इसलिए तो अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ कि अब तेरे बिन जी लेंगे हम। और ये गाना लेके आए हुए हैं हमारे राहुल पासी जी, और इसका फीमेल जो ये वर्जन है वो सुनना चाहती है एस खानम जी। तो पहले राहुल पासी जी का मैं गाना प्ले करता हूँ, फिर ये मैं प्ले करूंगा एस खानम जी का, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। इंजॉय कीजिए।

इसी बात पर यानी कि एस खानम जी का गाना मैं प्ले करके आता हूँ जो यानी फीमेल वर्जन में है, तो सुनवा देता हूँ और इंजॉय कीजिए एस खानम जी। अब तेरे बिन जी लेंगे हम।

बिल्कुल, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। वैसे फीडबैक भी बहुत सारे हैं, ओ माय गॉड मैं क्या करूं फीडबैक का। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और मीना कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना, आज अच्छा लगा। ओके जी, और नाहिद जी लिखते हैं कि नजरे झुका कर हमने तुम्हारा दीदार किया है, बिना कुछ बोले तुमसे बेइंतहा प्यार किया है, लोग ढूंढते होंगे गवाह अपनी वफा के, हमने तो तन्हाई में भी सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार किया है। आए है, आए है, क्या बात है, क्या बात है जी। जाकिर जी लिखते हैं कि अगर इश्क है तो छुपाती क्यों हो, मेरी बातों पर मुस्कुराती क्यों हो, और कह दो ना एक बार दिल की बात हमसे, वरना आंखों से प्यार जताती क्यों। आए है, आए है, आए है। मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस लाजवाब फरमाइश के लिए। और ज्योति जी लिखते हैं सुपर लाजवाब डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। शाहिद अंसारी जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और MD5 जी लिखते हैं वाह जबरदस्त खूबसूरत पसंद, थैंक यू सो मच। एंड और यहाँ पे सतीश कुमार प्रजापति जी लिखते हैं कि वाह बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ओके जी, और राहुल पासी जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने मेरा भी पसंद प्ले कर दिया है। दिलार कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना लग रहा है अमन मस्तर जी। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि दिस इज वंडरफुल सॉन्ग जी। और सरफराज पटेल जी लिखते हैं ब्यूटीफुल वॉयस एंड वेरी नाइस सिंगिंग, थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं कि अब तेरे बिन जी लेंगे हम, बहुत ही प्यारा गाना। और प्रशांत अम्बुलकर जी लिखते हैं कि आशिकी का सभी गाना सुपर हिट सुनकर मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ओके नहीं नहीं चलाए क्योंकि भाई क्योंकि दो गाना प्ले करेंगे ना, पड़ा मुझे फीमेल का भी वॉइस और मेल और मेल का भी, इसीलिए अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ किनका है, अगला जो डिमांड है वो नाहिद अंसारी जी का। तो नाहिद जी आपका गाना प्ले करते हैं, इंजॉय कीजिए। और सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती है नाहिद अंसारी जी।

बिल्कुल शिकवा करूं या शिकायत करूं, पर मैं तुझी से मोहब्बत करूं। रवि मार्ट जी लिखते हैं कि सुपरहिट लाजवाब पसंद, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, मजा आ गया सुन के। और प्रशांत अम्बुलकर सर जी लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम सुपरहिट लगा है, थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं कि राय जी के पसंद मुझे बहुत बेहतरीन लगी है, धन्यवाद देते हैं। और अमीना खान जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू सो मच। ज्योति जी लिखते हैं कि नाही जी के पसंद लाजवाब। और एमडी फाइव जी लिखते हैं वाह ये भी प्यारा गाना, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और नाही जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वह हमारे जाकिर खान जी की है, और जिंदगी को गुजारने के लिए भाई क्या होना चाहिए, तो सुनवाते हैं ना, एंजॉय कीजिए, एंजॉय द ट्रैक जिंदगी को गुजारने के लिए।

बिल्कुल जिंदगी को गुजारने के लिए, और बहुत सारा फीडबैक भी आया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा गाना, ओहो हो, और बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और यहाँ पे फूलवा संजू भाव जी लिखते हैं कि अमन सर जी आज का कार्यक्रम तो ललन टॉप रेलपुट हो गया है, मजा आ गया है, बुम्बो गैम्बो खुश हुआ। और नाही जी वाव सुपर ऑसम सरवाइज के लिए थैंक यू सो मच। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ऑसम पसंद, थैंक यू सो मच। और धर्मेंद्र सिंह जी लिखते हैं कि वाह अमन सर जी आज तो मजा आ गया सभी गाने सुन सुन के। और कुंता जी लेते वाव लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। जाकिर जी ओके जी, अगला जो डिमांड है वो मैं बता दूं किनका है, और ये

और गाना तो बहुत लंबा है और गाने की डिमांड बहुत सारी आई हुई है। ओ माय गॉड, सभी की छूटने वाली है, बहुत सारे दोस्तों के गाने छूटने वाले हैं, लेकिन मैं मतलब माफी चाहूंगा। लेकिन अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो आज के जो विनर है हमारे नंदलाल यादव जी, मैं उनके गाने को डिमांड का मैं पहले प्ले करता हूँ, फिर उसके बाद से आता हूँ तो मैं फीडबैक शामिल करूंगा। तो नंदलाल जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: वेलकम बैक, और फीडबैक भी आए हुए हैं मेरे पास बहुत सारे। जाकिर जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एंड प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि राजेश कुमार जी की भी पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है, थैंक यू सो मच। एंड गजानंद जी लिखते हैं जाकिर जी की पसंद मुझे बेहतरीन लगी, थैंक यू सो मच। और आपका मीना जी लिखते हैं कि शिकायत भी उसी से होती है जिसे बेशुमार मोहब्बत होती है, और दिल से तो वही जुदा नहीं होता है पर जुदाई आ ही जाती है, और सच्ची मोहब्बत में तो शक्ल से नहीं इन दिल से मोहब्बत किया जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होता है, क्योंकि यानी कि प्यार तो इन चेहरा देकर थोड़ा ना किया जाता है, प्यार तो दिल से होता है, और दिल जिसका खूबसूरत मतलब इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए, वो चेहरे से मतलब नहीं होता है, ना उम्र की सीमा हो ना मतलब यानी कोई बंधन हो कुछ भी नहीं, मतलब हर चीज यानी प्यार प्यार होता है, यानी प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और किशन पाल जी लिखते हैं शानदार प्रोग्राम के लिए धन्यवाद देते हैं, और फैज लिखते हैं जी एकदम जबरदस्त पसंद, और यहाँ पे कायनात जी ने दस्तक दे दिया, क्या कहती है जरा सुनते हैं।
1: तेरे दर पर सनम चले आए तू न आया तो हम चले आए, ऐसे यहाँ झिंगुर बोल रहा है और मुझे हंसी आ रही है, आगे नहीं गा सकते।
0: कोई बात नहीं, चलिए एंजॉय कीजिए अपने गाने को, तेरे दर पे सनम चले आए हैं, एंजॉय द ट्रैक। लेकिन झिंगुर गाता बहुत अच्छा है।

बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी बात पर मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं, लेकिन फीडबैक को थोड़ा सा रखते हैं साइड में, क्योंकि अगला गाना प्ले करते हैं जल्दी से। और ये गाना का डिमांड आया है हुकुम चंद जी का। हुकुम चंद जांगर जी कोटा राजस्थान से, एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

जी बिल्कुल, मैं सारी रात नहीं सो पा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल फीडबैक मेरे पास आया हुआ है। राम केजरी सिंह, आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार लगा है, थैंक यू सो मच। और कुंता जी लिखते हैं कि अमन सर जी बहुत ही शानदार प्रोग्राम आज का, और प्रोग्राम के साथ साथ आपकी और नाहिद जी के जो यहाँ पे शायरिया का जो नोक झोंक चला है वो बहुत अच्छा लगा है, और सभी दोस्तों की भी जो ये पसंद थी वो भी लाजवाब डिमांड के लिए, सभी को थैंक यू सो मच। और शिल्पा बेंच लिखते हैं कि यानी कायनात जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, ओके जी क्या बात है। और यहाँ पे एमडी फैज लिखते हैं कि कायनात जी का गाना एकदम दिल को सुकून देने वाला, थैंक यू सो मच आपका। और नंदिनी मां लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार लगा, थैंक यू सो मच। और बाबूलाल नंदना लिखते हैं कि कायनात जी की पसंद मुझे बहुत करी लगी है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है बीके पंत जी का, ओ दिलरुबा, ओके जी, तो मैं सुना रहा हूँ, एंजॉय कीजिए।

और आखिरी जो डिमांड आज मैं प्ले करने वाला हूँ वो मीना इब्राहिम जी का है, यूएस से जो सुनती हैं, और उसके बाद से मैं आप लोग से विदा दूंगा और कुछ दोस्तों गाने को मैं इन प्लेलिस्ट में लगा के जाऊंगा, वहां से आप लोग सुनते रहेंगे प्लीज। ओके।

0: अपना जुदा।
1: जी सर जी, बहुत बहुत बधाई हो आज के विनर बनने के लिए टॉप लीडर बोर्ड में।
2: थैंक यू सर।
1: लेकिन एक्चुअली आपका नंबर था आखिरी था, लेकिन यानी कि लॉटरी में नंबर वन आ गया, क्या बात है।
2: जी थैंक यू, बहुत दिनों बाद मैंने भाग लिया ना अच्छे से।
1: भाग भी लिया और प्लस यानी विनर भी बने, बहुत बहुत बधाई हो आज आपको।
2: जी।
1: आज आप कोई भी पसंद सुन सकते हैं जो दिल करे आपका।
2: सर किशोर कुमार द्वारा छूकर मेरे दिल को किया तूने क्या इशारा,
1: यार मेरे मन
2: मेरे दिल को मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
1: ओके चलिए सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए इस गाने को।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6:30 बजे, तब तक के लिए

जिधर में शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले। हाय देखो जिधर में शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले। हाय

to go.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: रोजी, रोजी, पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी,
2: मुझे भी नहीं आती,
0: मुझे भूख नहीं लगती थी,
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती,
0: दिल में दर्द होता था।
2: डर तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है।
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है, अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। मारिया, रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो-यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा। देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है,
5: अच्छा,
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।